और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सकें? अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथ ही हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलाम अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है।

और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे कनारा करता हूं और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे और हर एक को पैगंबर बनाया, और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की और उनका जिक्र जमील बुलंद किया।

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320432 ऐं 0242460।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

बबरलो में अगवातियल बारन जी बाजियाबी लाए वापस से अठे दिन बाद एहतजाज जारी प्रिय एक्शन कमेटी गुमथियल बारन के वारसन पारा कायम कल एहतजाजी कैंप से सियासी समाजी धुरन की आमद जारी मुजाहरीन पारा प्रिया कुमारी समेत अगवातियल सब बार बाजियाब कराने का मुतालबो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रोड हादसा टे जणा फौत सुल्तानकोट में बोतल से भरल मजदा ब्रेक फेल थे सब खानगी क्लिनिक से टकराजी वही ब जणा फौत फौतन में ठुलवासी असद बिरोही नासिर बिरोही शामिल नवाब शाह सकरण रोड से आयल टेंकर मोटरसाइकिल में टक्कर नौजवान फरहान मंसी दम दई छो सकरबर से खुलियल फाटक पर ट्रेन कार मथा चढ़ी वही रिटायर्ड डीएसपी भाव समेत फोत बजना जख्मी न्यू सकर सोसाइटी पर खुलियल होने सबब हादसों पेश आयो रिटायर्ड डीएसपी दरिया खान जतोई सरस भाव आरब जतोई थरे से फोत थी व्या लधु जुनेद जतोई सख्त जख्मी थी पा रूस ने यूक्रेन के गादी वाले शहर कीव में मिजाइल और ड्रोन हमला वीह शहरी मार विया नवे जख्मी इमारतों तबाह कियो जो मेयर चाहिए तो रूस शहरी आबादी के निशानों बनाए रो है रूसी अख्तियार मास्को रुगो यूक्रेन के फौजी मागन के निशानों बनाए पाया

0: ऐं पाकिस्तान भारत जंग में 11 जहाज किराया विया। अमरीकी सदर ट्रंप नई दावा साम्हूं करे अची वई आहे। मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान हुननि चवणो त ॿिनि एटमी मुल्कनि में जंग रोकी 3 करोड़ इंसानी जानियूं बचायूं। इसराइल में मुंहिंजी मक़बूलियत 99% हुई। समझ खां ॿाहिरि आहे त को यहूदी डेमोक्रेट खे वोट कीअं थो ॾेई सघे। अमरीकी सदर ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर नेटो ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त अमरीका नेटो ते 999 अरब डॉलर ख़र्च करे थो। बरतानिया 90 अरब डॉलर ऐं फ्रांस 66 अरब डॉलर, इटली 48 अरब डॉलर, पोलैंड 44 अरब डॉलर ऐं नेटो ते जर्मनी समेत ॿिया मुल्क घटि ख़र्च कनि था, जेको खिल जोॻो आहे। अमरीकी सभ खां वधीक ख़र्च करे रहियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-5569-0300-33-8555-69।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई न थो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेहराबपुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहराबपुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur, Atlas Honda Motorcycle Group per Atmat, Aima Akhtar 3S Dealer. आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307 3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8051।
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
4: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: Orada destana da şehir koyu takan pişavar benirle musafir bıç hatsı rışıkar çoğu musafir fıdır tızak mi. Fıdın çok vaat mı çok kat çoğu koyu takan pişavar benirle bıç KPJ ilaqe da nasara mi hatsı rışıkar tı. Fıdın jalla şen zakmi ispatal muntakil makami intizamiya mocu musafir bıç khai mi kiran sababadi ka jani nuksan thiwa hai.
1: ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामना जे आखिरी रस्मन जी अॼु खां शुरुआत आयतुल्ला खामना समेत संदस खानदान जा मड़ तेहरान जी मस्जिद में रखिया विया आयतुल्ला खामना जे आख़िरी रस्मनि में शिरकत लाइ परॾेही महिमाननि जी आमद जारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बि शहीद आयतुल्ला खामना जे आख़िरी रस्मनि में शरीक थींदो ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका या इसराइल शहीद आयतुल्ला खामना जे आख़िरी रस्मनि दौरान हमिलो कयो त जवाब तकिड़ो ऐं सख़्तु हूंदो
0: ईरान तकरीबन असां सभु शर्त मञण लाइ राज़ी थी वियो आहे ईरान जो नओ रेडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो हाणे ईरान वटि को बि रेडार सिस्टम न आहे अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तान भारत में जंग रोकी 3 करोड़ इंसाननि जूं जानियूं बचायूं इसराइल में सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां

0: धादु जे इलाइक़े रुकण भरिसां ॻोठ जबीर जे हथियारबंदनि जी फायरिंग, हिकु जहिड़ो क़तल, मक़तूल याकूब पुट यूसुफ चांडियो जी लाश इस्पताल मुंतकिल वारसनि मूजिबि अली मोहम्मद ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।
1: ऐं मिया साहिब, असां नेशनल हाईवे ते ट्रक खानगी अस्पताल सां टकराइजी वई, ॿ ॼणा फोत। सखर खां कोयटा वेंदड़ ट्रक ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी अस्पताल सां टकराइजी वई। हादसे में ट्रक ड्राइवर अस्तुल्लापुर मोहम्मद यूसुफ बिरोही ऐं नासिरपुर रोहिल बिरोही फोत थी विया।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ

0: 0320180003.
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
2: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silver Jar Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariyat, Dastyab Ain.
1: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
2: Rabtilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-0437-2, Ai 0242-460-100.
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ
4: 0385-569-0300-358-569. अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फ्रेंड
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

0: हेलो
1: हे नायर, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।
1: यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमरु।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8555-69।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: ईरान तकरीबन असांजा सभु शर्त मञण जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। ईरान जो नओं रडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो। हाणे ईरान वटि को बि रडार सिस्टम न आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत में जंगी रोक के 3 करोड़ इंसाननि जूं जानियूं बचायूं। इसराइल में बि सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां।
1: इसराइल अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि दौरान ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी ऐं स्पीकर मोहम्मद बाकिर खे क़तल करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। अमेरिकी मीडिया जे रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजे रिपोर्ट्स में ॼाणायो आहे त अमेरिका पारां इसराइली मनसूबे बाबति विच ओभर जे मुल्कनि खे आगाह कंदे अब्बास ऐं इराकची ऐं बाकिर खे महतात रहण बाबति चयो हो। इसराइली रथाबंदीअ जो मक़सदु अमेरिका ऐं ईरान विच में जंग बंदी ॻाल्हियुनि खे रोकणु हो।
0: वज़ीर आज़म गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाइण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि जी रोकथाम बाबति इजलास, एड्स ऐं हेपाटाइटिस समेत ॿियनि बीमारियुनि जी रोकथाम जे लाइ खयल क़दमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ चयो त गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाई वञे। क़ौमी सतह जी गॾियल हिकमत अमली असराइते तौर लागू थियण सां ई मसइलो हल थींदो। आलमी भाईवारनि जी मदद इंतिहाई ज़रूरी आहे।
1: बलूचिस्तान जे शहर कोयटा खां पिशावर वेंदड़ मुसाफ़िर बस हादसे जो शिकार, 40 मुसाफ़िर फोत, 8 ज़ख़्मी। फोतियुनि जे अंग में वात जो खसिजो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलूचिस्तान ऐं KPK जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी वई। फोतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। मक़ामी इंतिज़ामिया मूजिब मुसाफ़िर बस खाई में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो आहे। फोतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मी खे मक़ामी इस्पतालनि ॾांहुं मुंतकिल कयो वियो आहे।
0: हुकूमत वापारी बिरादरी जा मसइला हल करण जे लाइ संजीदा आहे। वापारियुनि जा मसइला हल करण जे लाइ कमु करे रहिया आहियूं। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स जी उगाड़ीअ जे लाइ वापारी ऐं चैम्बर्स FVR जो साथ ॾियनि। ईरान जंग सबबि व्याज जी शरह में मामूली वाधि थी, महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया।

0: कराचीअ में बाहि सबब सड़ी रख थियल गुल प्लाज़ा जी पुलिस चालान ते प्रोसिक्यूशन जा एतराज़ बरकरार। चालान अणपूरो करार ॾींदे केतिरनि ई खामियुनि जी निशानदेही करे छॾी। अदालती जांच खे चालान जो हिसो न बणाइण ते बि एतराज़ कयो वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट बंदि हुजण बाबति जांच नाहे कई। हिकु दुकान जी जॻह ते ॿ दुकान ठाहिण वारो मामिलो बि नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। प्रोसिक्यूशन जे एतराज़नि ते डीआईजी रखण इजलास सॾाए वरितो।
1: दादू जे इलाइक़े रुकण भरसां गोट जंबीर जे हथियारबंदनि जी फायरिंग। हिकु ॼणो क़तल मक़बूल याकूब पुटु यूसुफ चांडियो जो लाश इस्पताल मुंतकिल वारसन मौजूब अली मोहम्मद ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-5769।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865-453।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ए बिया शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत के लिए तहरान रवाना। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ए के पी जो गवर्नर अगू ही तहरान में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत बाद तुर्की के दौरे से रवाना थी। ईरान तकरीबन असा सब शर्त मंझण लाइ राजी थी वो है। ईरान जो नव रडार सिस्टम भी तबाह कर छो। हाँ ईरान वट को भी रडार सिस्टम ना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवा है पाकिस्तान भारत में जंग रोके 3 करोड़ इंसान जो जानू बचाऊँ। इसराइल में भी सब का मां मकबूल आया। इसराइल अमेरिका ईरान गालन दौरान ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के कत्ल करण जो मनसूबो जोड़ो हो। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पांच रिपोर्ट्स में जाना है तो अमेरिका पारा इसराइली मनसूबे बाबत विच भर के मुल्क के आगाह कदे अब्बास अराग़ची और बाकर कालिबाफ के भी मोहतात रहने बाबत हो। इसराइली रिथाबंदी का मकसद अमेरिका ईरान विच में जंगबंदी गाल रोकण हो। वजीर आजम गैर मयारी सिरिंजिस के इस्तेमाल ए तैयारी से पाबंदी लगने की हिदायत कर छी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ मुख्तलिफ मरजन की रोकथाम बाबत इजलास एड्स और हेपेटाइटिस समेत बेन बीमारियों की रोकथाम के लिए कल कदम जायजो वरतो वो। शहबाज शरीफ चो तो गैर मयारी सिरिंजिस के इस्तेमाल ए तैयारी से पाबंदी लगाई वे कौमी सतह की गडल हिकमत अमली असरायते तौर लागू थियण से ही मसलो हल थी। आलमी भाईवार की मदद इंतहाई जरूरी है। बलोचिस्तान के शहर कोयटा का पेशावर वेंदड़ मुसाफिर बस हादसे जो शिकार 40 मुसाफिर फौत 8 जख्मी फोतिन के अंग में वाध जो खदशो। कोयटा का पेशावर वेंदड़ बस बलोचिस्तान के पी के सरहद इलाके दानासरा में हादसे जो शिकार थी। फोतिन जा लाश ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकामी इंतजामिया मूजिब मुसाफिर बस खाई में किरण सबब जानी नुकसान थो है। फोतिन जहा मढ़ और जख्मी के मकामी अस्पताल दा मुंतकिल कर वो है। हुकूमत व्यापारी बिरादरी का मसला हल कर संजीदा है। व्यापारियों का मसला हल कर कम कर रहा हूं। नाने वाले वफाक वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो टैक्स की उगाड़ी के लिए व्यापारी ए चैम्बर्स ऑफ एफबीआर जो साथ दियन। ईरान जंग सबब ब्याज की शरह में मामूली वाध थी। महंगाई से जब्तों आने की कोशिश क्यों क्या। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की जिदा में मके के वक्ती गवर्नर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ए शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात कई। मुलाकात दौरान जिदा जो गवर्नर बया शाही खानदान जहा फर्द भी मौजूद हुआ। घरू वजीर पाक सऊदी लागपन के मजबूत बनाने वो अजम बजाय हज जहा बेहतरीन इंतजाम करते थोड़ा भी मना। सीनियर सूबाई वजीर शहजील इनाम अहमद से वफाकी वजीर राना मोहम्मद कासिम नून की मुलाकात। आजाद कश्मीर की सूरतहाल ए कौमी यकजहती बाबत ख्याल की दे वट। वालाल कश्मीर में इंसानी हकन के भंज कर मजम्मत। पार्लियामानी कमेटी और सिंधु हुकूमत विच में सहकार के मजबूत बनाने से तफाक। शहजील इनाम अहमद।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट आर पी एम जी

0: एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: खुशखबरी हानी अवाजे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 3 8 5 6 9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301399 2836।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

ईरान तकरीबन असांजा सभु शर्त मञण जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। ईरान जो नओं रडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो। हाणे ईरान वटि को बि रडार सिस्टम नाहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत में जंग रोके 3 करोड़ इंसाननि जूं हयातियूं बचायूं। इसराइल में बि सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां। इसराइल, अमेरिका, ईरान ॻाल्हियुनि दौरान ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकची ऐं स्पीकर मोहम्मद बाक कालेबाफ खे क़तल करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। अमेरिकी मीडिया जी रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट्स में ॼाणायो आहे त अमेरिका पारां इसराइली मनसूबे बाबति विच

बलोचिस्तान जे शहर कोयटा खां पिशावर वेंदड़ मुसाफ़िर बस हादसे जो शिकार, 40 मुसाफ़िर फौत, 8 ज़ख़्मी, फौतनि जे अघ में वाधि जो ख़दशो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलोचिस्तान केपी जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी। फौतनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। मक़ामी इंतज़ामिया मूजिब मुसाफ़िर बस खाईअ में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो आहे। फौतनि जा मर ऐं ज़ख़्मीनि खे मक़ामी इस्पतालनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो आहे। हुकूमत वापारी बिरादरी जा मसाला हल करण जे लाइ संजीदा आहे। वापारियुनि जा मसाला हल करण जे लाइ कम करे रहिया आहियूं। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स जी उगाड़ीअ जे लाइ वापारी ऐं चैम्बर्स FBR जो साथ ॾियनि। ईरान जंग सबबि व्याज जी शरह में मामूली वाधि थी, महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया। वफ़ाकी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी जिदा में मके जे वक़्ती गवर्नर सां मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी ऐं शहज़ादे सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अज़ीज़ विच में मुलाक़ात थी। मुलाक़ात दौरान जिदा जो गवर्नर ॿिया शाही ख़ानदान जा फर्द बि मौजूदु हुआ। घर वज़ीर पाक सऊदी लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण वारो अज़म वॼायो। हज जा बहितरीन इंतज़ाम करण ते थोरा बि मञा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेवर सां वफ़ाकी वज़ीर राना मोहम्मद क़ासिम नून जी मुलाक़ात। आज़ाद कश्मीर जी सूरतहाल ऐं क़ौमी यकजहतीअ बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठि। वालाल कश्मीर में इंसानी हक़नि जे भञकड़नि जी मज़म्मत। पार्लियामेंटी कमेटी ऐं सिंध हुकूमत विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणाइण ते इतफ़ाक़। शर्जील इनाम मेमन चयो त कश्मीर जहिड़े क़ौमी मुफ़ाद ते वफ़ाकी ऐं सूबाई इदारनि में राब्ता ऐं हम आहंगी अणटर आहे। कश्मीर मसइलो पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसीअ जो अहम हिसो आहे। लाहौर में परॾेही औरतुनि खे अगवा बाद ज़्यादती करण वारे केस में गिरफ़्तार नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे ॾोहिटे मोहम्मद रज़ा डार समेत 4 ॼणा अदालत में पेश। पुलिस रज़ा डार, हसन रज़ा, सिकंदर ख़ान, साजिद अली खे अदालत में पेश कयो। जांच अफ़सर पारां अदालत खे जवाबदारनि जो 14 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾियण जी सदा। अदालत रज़ा डार समेत चइनी जवाबदारनि खे 4 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। ॿीहर 8 जुलाई ते पेश करण जो हुकुम। नैदरलैंड जी औरत रज़ा डार समेत 5 ॼणनि ख़िलाफ़ अगवा ऐं ज़्यादतीअ जो केस दाख़िल करायो आहे। पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं मुबैना तौर अगवा थियल ॿिन्ही औरतुनि खे बाज़ियाब करायो हो। कराची में बाहि सबबि सड़ी रख थियल गुल प्लाज़ा जे पुलिस चालान ते प्रोसिक्यूशन जा एतिराज़ बरक़रार। चालान अणपूरो करार ॾींदे केतिरनि ई खामियुनि जी निशानदेही करे छॾी। अदालती जांच खे चालान जो हिसो न बणाइण ते बि एतिराज़ कयो वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट बंदि हुजण बाबति जांच नाहे कई। हिकु दुकान जी जॻह ते 2 दुकान ठाहिण वारो मामिलो बि नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। प्रोसिक्यूशन जे एतिराज़नि ते DIG ॾखण इजलास सॾाए वरितो। दादू जे इलाइक़े रुकण भरिसां ॻोठ में हथियारबंदनि जी फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल। मक़तूल याकूब पुटु यूसुफ चांडियो जो लाश इस्पताल मुंतक़िल। वारसनि मूजिबि अली मोहम्मद ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तलु कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। मंज़ूराबाद वेझो मांझंदि में बदमनीअ मंशियात जे विकिरे ख़िलाफ़ SUP जी रैली ऐं धरणो। SUP कारकुननि शाही बाज़ार खां रैली कढी मेन चौक ते धरणो हुयो। मुजाहिरनि चयो त पुलिस जी नाअहलीअ सबबि मांझंदि तालुक़े में मंशियात जो आज़ार वधी वियो आहे। नौजवान नसुल तबाह थी रहियो आहे। पुलिस मंशियात फरोशनि सां बिठ बणियल आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में क़ौमी अवामी तहरीक जा पाणीअ जी खोट ऐं सिंध जे ॿियनि मसइलनि ख़िलाफ़ मार्च ऐं धरणा। दादू में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मार्च करे धरणो हयो वियो। कंबर में बि क़ौमी अवामी तहरीक सिंध जे मसइलनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। टंडोबागो में बि क़ौमी अवामी तहरीक एहतजाज कयो। सिंध ख़िलाफ़ का बि साज़िश क़बूल न करण जो ऐलान। नगर पालकर भरिसां ॿिन्ही निंगरिन जा लाश साड़ण वारे वाके जो 7 जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। ॻोठ सोतलाई मां 2 ॾींहं अॻु 13 वरनि जे भानू कोली ऐं 14 वरनि जी कुंवरबाई जा लाश हथाया हुआ। पुलिस जो चवण आहे त वारसनि वाके खे मुबैना आबघात ॼाणाए बिना पोस्टमार्टम जे लाश साड़े छॾिया हुआ। पुलिस वाके वारे हंधु पहुती त वारसनि मज़ामत कई ऐं कानूनी कार्यवाही खां अॻु ई लाश साड़े छॾिया। पुलिस जी मुदयत में केस दाख़िल कयो वियो। नसीराबाद में बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ऐं वाधू बिल्स मोकिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। जमात इस्लामी जे कारकुननि रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। अॻवान चयो त बिजली जी लोडशेडिंग सबबि कारोबार सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। बिजली जी लोडशेडिंग ऐं वाधू बिल्स उमाणण जो सिलसिलो बंदि कयो वञे।

0: खैरपुर नाथन शाह जी तालके अस्पताल में दवाउनि ऐं सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ रैली एहतजाजी मुज़ाहिरो। शहरनि चयो त तालके अस्पताल में दवाउनि जी खोट आहे, एक्सरे मशीन ऐं अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब आहिनि, मरीज़ दर बदर आहिनि, अस्पताल मां सहूलियतुनि जी खोट ख़तम कई वञे। ऐं फीफा वर्ल्ड कप जो नॉकआउट मरहलो जारी, अॻूणी चैंपियन स्पेन जी टीम 16 सालनि बाद राउंड 16 में वापसी। स्पेन ऑस्ट्रिया खे बुड़ीअ जे भेट में 3 गोल सां शिकस्त ॾेई प्री क्वार्टर फाइनल जे लाइ क्वालिफाई करे वरितो। स्विट्ज़रलैंड जी टीम बि 88 सालनि बाद नॉकआउट मरहले में कामयाबी माणे वरिती।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383 85569 0300 33 8556 9।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03016 1196 851

ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: जासदार ऐं आला सतही वफ़द आयतुल्लाह ख़ामनई जे मढ़ जो आख़िरी दीदार करे रहिया आहिनि। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमरीका या इसराइल शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई जी आख़िरी रस्मुनि दौरान हमिलो कयो त जवाब तकिड़ो ऐं सख़्तु हूंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जी शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक, वॾे वज़ीर मुआद अली शाह ऐं ॿियनि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि ईरानी सदर ऐं ॿी क़यादत सां बि मुलाक़ात कई। इसराइल, अमरीका, ईरान गालियुनि दौरान ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची ऐं स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालिबाफ खे क़त्ल करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। अमरीकी मीडिया जी रिपोर्ट। वॉशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट्स में ॼाणायो आहे त अमरीका पारां इसराइली मनसूबे बाबति विच ओभर जे मुल्कनि खे आगाह कंदे अब्बास अराग़ची ऐं बाक़र क़ालिबाफ खे मुहतात रहण बाबति चयो हो। इसराइली रिथाबंदी जो मक़सद अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदी ॻाल्हियुनि खे रोकणु हो। वज़ीर आज़म गैर मयारी सिरिंजिस इस्तेमाल ऐं तयारी ते पाबंदी लॻाइण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि जी रोकथाम बाबति इजलास। एड्स ऐं हेपेटाइटिस समेत ॿियनि बीमारियुनि जी रोकथाम लाइ खयल क़दमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ चयो त गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाई वञे। क़ौमी सतह जी गॾियल हिकमत अमली असराइती तौर लागू थियण सां ई मसइलो हल थींदो। आलमी भाई वारनि जी मदद इंतिहाई ज़रूरी आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोयटा खां पिशावर वेंदड़ मुसाफ़िर बस हादसे जो शिकार। 40 मुसाफ़िर फोत, 8 ज़ख़्मी। फोतियुनि जे अंग में वात जो खिचो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी। फोतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। मक़ामी इंतिज़ामिया मूजिबि मुसाफ़िर बस खाई में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान।

0: कपड़ा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई में दिया है। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटो से पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: नाजिन हैदराबाद में खबर शामिल की नासी हैदराबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के पी
1: कि आज हम एक ऐसे हसास और तकलीफ दे माहौल से गुजर रहे हैं, दौर से गुजर रहे हैं जिसने पूरे माशरे को जमीर को झंझोड़ कर रख दिया है। जनाब मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, कत्ल जैसे हौलनाक जराइम हो रहे हैं जनाब, और इससे वो चंद मुतासर खानदान ही नहीं बल्कि पूरी कौम का ये हमारा अलमिया है। ऐसे वाकयात से न सिर्फ बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है दोस्तों, बल्कि वालदैन के दिलों में मुस्तकिल खौफ भी पैदा कर दिया जाता है, और जनाब वो बेचारे सारी उम्र से सकते रहते हैं अपने बच्चों के कुर्ब के लिए, और जनाब जो हालात हो चुके हैं ना, पता नहीं हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग किस राह पे जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आती हम लोग जानवर क्यों बन गए। अल्लाह ताला ने तो हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया था, लेकिन हमारे अंदर ये दरिंदगी कहाँ से आ गई है, हमारे अंदर ये वहशीपन कहाँ से आ गया है। अरे जनाब ये वक्त खामोश रहने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि शऊर, जिम्मेदारी और अमली इकदामात का भी है। बच्चों की हिफाजत अवलीन तरजीह है, बच्चों को उनकी हिफाजत के बारे में आगाह करें, शर्माएं ना, उनको बताएं कि बैड टच गुड टच क्या होता है जनाब, और उनको बताएं कि क्या बुरी चीजें हैं, क्योंकि जमाने में ये सब चीजें बताना जरूरी होती है। अब वक्त नहीं रहा कि हम लोग खामोश हो जाएं। अरे जनाब, और आज की जो जेन जी है वो सब चीज़ें अच्छे तरीके से अडॉप्ट करिए, उनको पता है कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, तो हमें क्यों नहीं बताने में हम शर्म करते हैं, हम आर करते हैं कि हम उन तमाम चीज़ें वो बताएं। तो जनाब अपने बच्चों को आगाह करें इनसे, उनसे खुलकर बात करें, उनकी बात सुने, किसी भी मशकूक सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दें, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है दोस्तों ये। और अगर हम टीचर हैं, अगर हम उनके ट्यूटर हैं, अगर हम उनके पेरेंट्स हैं, तो यकीनी तौर पर हमें ये सब चीज़ें उनको बताना बहुत बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों माहरीन भी इस बात पर जोर देते हैं कि वालदैन, असातिज़ा और माशरा मिलकर बच्चों में ज़ाती हिफाजत के बारे में एतमाद और आगाही पैदा करें, ताकि वो इन नागहानी सूरत हाल से निमटने का उनमें हौसला आए, उनको सिचुएशन से नबर्द आजमा होने के तरीके आए। तो बिल्कुल जनाब ऐसे दिलखराश वाकयात क्यों पेश आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, वालदैन, असातिज़ा, कानून नाफिज करने वाले इदारे और माशरा क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह एक महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल दे सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें बताइए, क्योंकि आज कल बाशऊर हमारी जेन ज़ी है, बाशऊर बच्चे हैं, वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो प्लीज़ हम सबकी जिम्मेदारी है उनको आगाह करने की, उनको गाइड करने की, तो उन्हें गाइड करें। खैर जनाब ऐसी बहुत सारी बातें भी हम अपने प्रोग्राम में करते रहेंगे। गर्मा गर्मी इतनी शिद्दत से पड़ रही है ना कि दिल चाहता है किसी ठंडे इलाके में चले जाएं और जनाब वहां जाके बसेरा कर लें, और जैसे ही यहां पे ठंड का मौसम है तो वापस आ जाएं। हर बंदे की यही ख्वाहिश हो रही होती है, लेकिन क्या करें कि इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस नहीं है। अगर हम नॉर्दर्न एरिया भी जाते हैं तो जनाब बोरी भर के पैसों की लग जाती है, और फिर हम लोग सोचते रह जाते हैं कि यार घर का खर्चा चला या घूमने जाएं। तो ऐसी सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ है, जिस तरह मेरे साथ है, जिस तरह आपके साथ बहुत से लोगों के साथ है, लेकिन यहां पर हम लोग गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नॉर्दर्न एरियाज भी जा रहे हैं तो उनसे यही हाथ बांध के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वहां के मौसम को देखकर जाएं और वहां पे जाके शोखियां ना करें, क्योंकि अभी जो आप कुछ रीसेंट वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, तो जनाब उस पर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो पता चला कि जनाब वहाँ पे जाके हम लोग बहुत ज़्यादा शोखे हो जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले तो हम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे होते, देन वहाँ पर जाकर जो है नेचर को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे होते हैं, पोल्यूशन फैला रहे होते हैं, आलूदगी फैला रहे होते हैं। इसके बाद जनाब वहाँ पर अपनी जान की परवाह नहीं करते हम लोग, हमें सेफ्टी जो है चीज़ों का ख्याल नहीं होता, हमें सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं हो रहा होता। अब देखिए रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि कुछ बंदे जो है वीगो गार्ड डाले पे खड़े होकर बीच दरिया में जो इतनी तेज़ी से रहा है उसमें ये खड़े होकर सेल्फियां ले रहे हैं, और फिर क्या हुआ आपने सबने देखा कि उनकी जान पर बनाई और उनको रेस्क्यू किया गया। अगर उनको रेस्क्यू बर वक्त ना किया जाता तो वो गाड़ी तो जाती ही जाती, वो चली भी गई थी, और वो बंदे भी अपनी जान से हाथ धो बैठते, और फिर जनाब देखें कितने घर उजड़ जाते, कितने बच्चे यतीम हो जाते, कितनी माएँ रोती से सकती रह जाती। तो जनाब प्लीज़ ये लापरवाही अपनी जान के साथ मत बरतें, अपने आप के साथ मत बरतें, क्योंकि देखें आपके साथ आपकी बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। तो ऐसे शोखेपन से परहेज़ कीजिए और थोड़ा सा सेंसिबल हो जाइए तो ज़्यादा बेटर है। फिर तो वो भी रिकवर हो गया, उनकी गाड़ी भी रिकवर हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखें एक बहुत बड़ा हमें सबक दे गई है ये तमाम चीज़ें जो कि हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा होता है, सोशल मीडिया से नोहाव हो रही होती है। तो हमें अपडेट रहना चाहिए, और अपडेट रहने के लिए जनाब हमें हाजिर दिमाग रहना चाहिए, और हाजिर दिमाग हम तभी रह सकते हैं जब आप मुझे सुनेंगे। बिल्कुल जनाब, यानी कि GFM88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल। बहुत सारी बातें होगी, कॉल भी लेते हैं आपकी, जरा सब्र करें और धीरज रखें, क्योंकि दो घंटे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं सुनवाता हूं आपका शो का पहला सुपर हिट सॉन्ग, जनाब इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कहानी सुनो बाई कैफी खलील, इस गाने को सुनिएगा और इस सुनते रहिएगा GFM 88 नेटवर्क से आपका अपना शो अशफाक नियाज़ी के साथ। आई लव यू ऑल। 03000113488 हमारा नंबर है। गर्मा गर्मी को भगाइए और स्कूल से गाने को एंजॉय कीजिए और ठंडा ठार हो जाइए आप सभी।

0: जी जना वेलकम बैक। कहानी सुनो, हमारी जबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, क्या बात है। बहुत प्यारा सा, बहुत आला सा गाना हमने आपके समातों की नजर किया। हुण पै गई है कलेजे विच ठंड। बिल्कुल जनाब, आई एम डैम श्योर के आपके कलेजों में ठंड पड़ गई होगी और यकीनी तौर पर बहुत अच्छा भी लग रहा होगा आपको हमारे साथ रहकर। और जब आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कॉल करें 03000113488 पर। लेते हैं शो की पहली कॉल। ओए अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप नहीं हुई, हो गई, आए, आए, मर गए। है जनाब, कोई बात नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जनाब हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ चले गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अदा केर असा सा घर मुखे लगे तो असा जो पुरानो कॉलर आहे मिरानी साहब।
1: हां जो पुरानो 21612 घोटी बाबा बिना साल खान तो नाराज हो।
0: अल्लाह हु अकबर, मुखा वरी केडी नाराजगी बाबा, मुखा तो कोई नाराजी न थिंदो आ तहां
1: की थी। बाबा नाराजगी देखो, नाराजगी तू ने खन पिया ना।
0: हेलो बाबा, मुसा जेका मुजी नाराजगी है हुआ मुसा गलायो, बके बेन जी नाराजगी सा बेन सा गलायो। ठीक है, तहां जो नालो चाहे मा विसरी बिया मदा।
1: मा दांगे पड़ोसिया
0: क्या हाल चाल है आपके? कड़ा हाल चाल है दादा?
1: शुक्र
0: मिरानी साहब।

0: ਕਿਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਡੰਗ ਬੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
1: ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
0: ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਉਹ
1: सुठी गाल संगत में वेही करी प्रोग्राम भी इंजॉय कर हिंसर में तुम्हारे लिए थोड़ी देर बाद गानों भी हलो उथ दे वेहंदे हुसन वारण जो ये गाय गाय बुधा असो जलाल थैंक यू सो मच अलीगुल मिरानी साहब थैंक यू वालेकुम अस्सलाम थैंक यू हमारे साथ जनाब अलीगुल मिरानी और बहुत ही प्यारे और लेजेंडरी सिंगर जलाल चांडियो का बहुत ही प्यारा सा गाना उन्होंने फरमाइश किया है हम जरूर चलाएंगे लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ है कौन अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
1: जी जनाब कौन हमारे साथ केर असा सबनी सा गड जमालदीन भाई साहब के हाल चाल ठीक ठाक है हो फर्स्ट क्लास यो बुधायो गर्मी जा हाल यो बाबा शिकारपुर में केतरी गर्मी पई थी सफा अड़ा ही हाल उतों जा भी चलो जी अस गज दुआ था क्यों कोई वा वा ककर अची वन मीह वसे हवाओं थदियों गुलन तो जी अस इतने थदकार थी वने सफा जमाल मामा यो बुधायो त जलाल चांडो जो गानों तो प्ले क्या कें ना करना चाहो ओके ओके वालेकुम अस्सलाम मामा जलाल तांजी आवाज डिस्टर्ब में भी थे आई थोड़ी कटजे भी पई पर कोई गाल ना है तवहां असा सबनी सा गड आया हो तांजी वडी वडी मेहरबानी त तांसा के कॉल किया है आई असा के जनाब टाइम दिनो है थैंक यू सो मच और जनाब आप भी हमारे साथ आ जाएं और हमारे कॉलर बढ़ जाएं जिस तरह बिल्कुल अचानक से सोने की कीमतें बढ़ गई हैं उस तरह हम चाहते हैं कि हमारे कॉलर्स बढ़ते जाएं और सोने की कीमतों की जहां तक बात की तो मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है फी तोला सोने की कीमत क्या है ओए होए होए होए जनाब सोना बहुत महंगा हो गया है आज जो है फी तोला कीमत है सोने की 4,40,936 रुपए तो बिल्कुल जनाब वो पहले जमाना होता था ना कहते थे गाना गाते थे सोना हुआ महंगा मैं चांदी ले आई तो जनाब चांदी भी महंगी हुई अब क्या करें जनाब गुजारा तो करना ही है अस्सलाम वालेकुम लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केर असा सबनी सा गड ओ माय गॉड इतना जबरदस्त हमारे साथ कॉलर आए थे बड़े सुर में उन्होंने हमें कॉल किया और हेलो कहा लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गए अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम
1: जी केरसा सबनी सा गड
3: इरफान अली थेलो गुलाबी संगत खबरी बिटका
1: इरफान तुम्हारे तो नसीब बड़े तेज है वो बेचारे हमारे साथ एक कॉलर आए थे जिनकी आवाज बड़ी प्यारी और सुरीली थी आपने उनकी कॉल ही कट गई आपकी वजह से ना ऐसा ही हुआ
3: हाँ बिल्कुल मैंने पता है क्या किया
1: नहीं
3: ना आपकी मोबाइल ना उसकी मोबाइल मेरे पास थी
1: हाँ हाँ
3: मैंने जेज वालों से के सिस्टम लिया था मैंने कहा अगर अशफाक भाई के जो मैं कॉल ना लगे ना
1: हाँ हाँ
3: ऐसा मुझे तरीका बताए कि मैं उसको ऐसा कुछ बटन को प्रेस कर दो उस बंदे की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए और मेरी लाइन मिल जाए
1: वनो को पनौतिया
3: और मेरा काम हो गया अभी तो ब्रेक भी आने वाला है अब क्या होगा उसके साथ मैंने जुलम किया मेरे साथ
1: ब्रेक याद ही नहीं था यार तुमने मुझे ब्रेक याद दिला दिया क्या बात है
3: नहीं पता है
1: नहीं
3: मैं आज होल्ड भी करूंगा
1: अच्छा
3: ब्रेक के बाद भी बात करूंगा लेकिन ऐसा ना हो कि ब्रेक के बाद आप वापस आए और फिर सॉन्ग चलाएं और मेरा बैलेंस सब खत्म
1: ऐसी बात नहीं आज थोड़ा सा ब्रेक हम शॉर्ट भी है और हम जल्दी वापस आ जाएंगे अच्छा ये बताओ क्या हाल चाल है आपके ठीक है
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अशफाक भाई बिल्कुल
1: और इतने अरसे तक कहाँ गायब थे आप
3: हाँ बिल्कुल बहुत टाइम हो गया है आज रेडियो चलाया आपकी आवाज इतनी प्यारी थी मीठी थी बहुत अच्छी थी आवाज मैंने कहा कि यार आज तो अशफाक भाई के शो में कॉल लगानी
1: थैंक यू सो मच यार आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी अब तो पता नहीं हजम हो मुझे ना हो लेकिन आप ये
3: पिछले तो जुम्मे के दिन आपने शो पता नहीं दस मुहर्रम के तो नहीं किया होगा
1: नहीं मुहर्रम के यौम आशूरा में मैंने बिल्कुल शो नहीं किए दो जुम्मे आए थे लेकिन मैंने दोनों जुम्मे ही नहीं किए और उससे पहले भी मैं आउट हो गया था थोड़ा सा आउटिंग के लिए कहीं चला गया था
3: तो बिल्कुल आप आउट हो गए थे के आउट या रन आउट
1: मैं बोल्ड हो गया
3: यही जो है ना हाल मेरा भी था
1: अच्छा
3: मैं भी बोल्ड हो गया था
1: अच्छा चले कोई बात नहीं बोल्ड नहीं होते हम चलते हैं यार कमर्शियल ब्रेक लंबी है इंतजार करोगे या बातें करोगे
3: नहीं इंतजार करूंगा आप नहीं ब्रेक
1: अच्छा चले हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने हमारे साथ इरफान अली थेबो बहुत अरसे बाद आए तो लेते हैं एक अदद कमर्शियल ब्रेक
4: तहजीब व सकाफत से सजी
2: सिंध की मेहमान नवाज धरती
4: जिसकी फजान जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाने पहिंजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।

0: उथंदे वेहंदे हुसन वारनि जो मुंहुं ॾिसण बि सवाबु आहे बाबा, वॾी सवाब जी ॻाल्हि आहे। ऐं सवाबु खटंदा कयो ऐं मूंसां गॾु रहो। वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, केरु असां सभिनी सां गॾु?
1: खैरदीन
0: जाफ़री। मेहरदीन जाफ़री साहब, तव्हांजा कहिड़ा हाल चाल आहिनि? किथां पिया ॻाल्हायो मेहरबा? मीरपुर वारा ठुल वारा बि पहुता आहिनि। ॿियो ॿुधायो, गर्मी जा हाल ॾियो भाउ। गर्मी में कीअं गुज़ारो हिते? अलाह अकबर, ईअं कड़क हार न कजो, रेडियो छो बंदि कंदो? गर्मी असां थोरी कई आहे, गर्मी असां थोरी कई आहे
1: भाउ।
0: अलाह साईं खे चओ न, मां वापडा वारो बि कोन आहियां जो तव्हां हुनजी कावड़ मुते था लाहियो त रेडियो बंदि कंदो। बाबा, असां वापडा वारनि खे चयो आहे, खुदा जो नालो अथव, खुदा जो नालो अथव, सुधरी वञो वापडा वारा, बिजली ॾियो सभिनी खे त जीअं गर्मीअ वारा आसानी सां गुज़री
1: सघनि।
0: ईअं न? अच्छा, महरदीन भाभी आहे ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, मज़े में। शो कीअं थो लॻे तव्हांखे? अच्छा, त हिन शो में हाणे मां गानो थो ॿुधायां। अदी जी फरमाइश आई हुई त नाराज़ पई थिए त असांजी फरमाइश न हलाईंदा आहियो, उन जी फरमाइश हलाइंदुमि। साहिर अली भगत जो सुपर हिट सॉन्ग कंहिंजे नाले करणु चाहियो? वापडा वारो त घर वारो अथव, पोइ हुनखे गुसो नथा कयो, कावड़ नथा कयो हुते? वरी हो ॿियनि खे त पाईंदो हूंदो। अच्छा अच्छा, सही सही। जी जी, ॿियो केर नालो? फलक शेर बदीन वारो। खैर सां बदीन वारा, फर्स्ट टाइम मुंहिंजे शो में आया
1: आहिनि?
0: अच्छा, वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बदीन जो मौसम कीअं आहे? थधो आहे, मिठो आहे, कीअं आहे? अच्छा अच्छा, फलक शेरबा, तव्हां छा कंदा आहियो? अच्छा, तव्हां ब्लाइंड आहियो, कोई मसलो न आहे, पर जेका ब्लाइंड माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे अलाए ॿिया ख़ासियूं नवाज़दो आहे, उन्हनि खे ॿिया क्वालिटीज़ बि ॾींदो आहे अलाए साईं। बेशक बेशक, असांजी दुआऊं तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहिनि हमेशह हमेशह। ऐं इहो ॿुधायो त अॼु मुंहिंजे शो में कॉल कई आहे त तव्हांखे शो कीअं लॻंदो आहे? तव्हांखे सखर घुमिया फिरे आयो किथे? सखर घुमिया फिरे आयो किथे? मां चयोमांव त सखर किथे घुमण फिरण विया आहियो सखर में? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। माना कचहरियूं वचहरियूं थयूं खूब? अच्छा, मां हाणे गानो डेडिकेट कयूं था तव्हांखे, साहिर अली भगत जो नेक्स्ट गानो आहे, मुंहिंजे तव्हां मुंहिंजे प्यारे भाउ, माना तव्हांजे नाले कंहिंखे डेडिकेट करणु चाहियो था तव्हां? अच्छा, हुनखे? सही सही सही सही सही, ठीकु ठीकु ठीकु। कहिड़ो कहिड़ो ॿुधायो, तव्हांजी फरमाइश ज़रूरु पूरी कंदासीं इंशाल्लाह। अच्छा, तुंहिंजी मोहबत मां अलाह ॾिनो
1: जुड़े जो,
0: अलाह ॾिनो जुड़े जो। ओके, मां इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिशि कयां त नेक्स्ट कलाक में तव्हांजो गानो हलायां। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अलाह ॾिनो जुड़े जो। ओके जनाब, सर्च करते हैं हम, और आप फिलहाल ये गाना सुने जो कि दुआ ने फरमाइश की थी, वरना वो फिर से कहेंगी कि जनाब हमारी कॉल करण अजायो भी दुआ। तो आपकी फरमाइश हम प्ले कर चुके हैं, सारे अली बगा का दिलकश गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: उहे शिफ़ा याब थिया ऐं अॼु उहे तमामु घणो ख़ुशि आहिनि ऐं अॼु बि डॉक्टर साहिब खे दुआऊं ॾींदा रहंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन आहिनि। 30 सालनि खां वधीक डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो आहे। अव्हांखे अगरि गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, पाइल्स आहिनि, गले जा गुदूद आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, अव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत नाहे। उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। केॾो बि पुराणो अव्हांखे जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फालज, खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी, सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चहिरे जो रंगु सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु या जिन औरतुनि जो वज़न नथो वधे या जंहिंजो वज़न वधी वञे थो, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-21-96-851 0301-21-96-851 ते तव्हां कॉल करे सघो था। कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक, साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। दोस्तनि खे असीं चवंदा आहियूं त अवे ज़्यादा खां ज़्यादा प्रोग्राम में कॉल्स करे डॉक्टर साहिब खां कंहिं बि बीमारी बाबति मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था। डॉक्टर साहिबु अव्हांखे मालूमात ॾींदो। त सभ खां पहिरियां असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चवंदा। डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे,
1: अलाह ताला जा करुण अहसान
0: आहे। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु। कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा ऐं पंहिंजा ॾींहं जेके तव्हां हिते वेहंदा आहियो उहे बि ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा, जीअं असांजा मौज़ ॿुधंदड़ जेको आहे सो माना आसानी सां सम्झी
1: सघनि। पहिरियां त तारीफ़ूं उन पाकचूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असां प्रोग्राम से अची ॻाल्हि बर वक़्तनि टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त हर उहा ॼाण जेके असांजा घर वेठे मौज़ीन लिसनर्स आहिनि या दोस्त आहिनि या पेशंट हज़रात आहिनि ॿुधंदा आहिनि त उन्हनि ताईं पहुचाए सघूं। जीअं लास्ट टाइम जेको आहे सो हिकिड़े ग़िज़ा जे हवाले सां प्रोग्राम कयोसीं, उन्हनि खे तमामु घणो सभिनी साराहियो ऐं मैसेजिस में बि इहो ई जेको आहे सो रिक्वेस्ट कई त आईंदा बि असांखे कुझु अहिड़े ई जेको आहे सो ग़िज़ाउनि जे बारे में जेकी ॼाण जेकी असां बीमारियुनि जे हवाले सां जेके जेके टोटका हूंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां या जेको देसी ॾसनि जे हवाले सां उहे बि इहे प्रोग्राम असांजो मशहूरु हूंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक इन हवाले सां जेकी हर मर्ज़ जे हवाले सां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूरु आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ अमराज़ अव्हांखे ख़बर आहे त नक, कन, गले जो गदूद वधी वेंदो आहे या जेको आहे सो किडनी स्टोन हूंदो आहे या पिते जी पथरी या जेको आहे सो मैदे जी तेज़ाबियत या मैदे जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या जोड़नि जो सूरु या कुन रग जी जेको आहे सो सूरु हूंदो आहे, कुन रग जी जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे उन हवाले सां या गर्दनि जा जेके मोहरा जेको आहे सो यानी कमु न कंदा आहिनि या जेको आहे सो कमर दर्द हूंदो आहे या ज़नाना मर्दाना मसाला हूंदा आहिनि, UTI इन्फेक्शन हूंदो आहे, बवासीर जो मसइलो हूंदो आहे, त इन हवाले सां असां वटि होम्योपैथिक जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड ते सुबुह जो टाइमिंग 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं अहिड़े तरीक़े सां हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर, सूमर, अरबा, ख़मीस मौजूदु हूंदा आहियूं। अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजो चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे, जेको जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं हूंदो आहे। बाक़ी दवाऊं अव्हांखे वठणियूं हूंदियूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त सो कहिड़े बि मर्ज़ में जेको आहे सो हिकु त इलाजु कराइणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। हीअ जेके अव्हांखे असां 10-15 ॾींदा आहियूं इहे बिल्कुलु जेको आहे तमामु बहितरीन आहिनि एज़ अ फर्स्ट एड तौर ते या जेको आहे सो फ़िलहालु जेको वक़्ती तौर ते अव्हांखे बिल्कुलु हेल्प कंदा आहिनि ऐं हूअं बि इहे क़ुदिरती शयूं जेको आहे सो असांखे खाइणु घुरिजनि, छो जो क़ुदिरती शयुनि सां जेको उन्हनि में को बि केमिकल वग़ैरह इन्हनि खे माण्हू न ठाहींदा आहिनि, इन्हनि खे अलाह ताला तख़लीक़ कयो आहे ऐं जेके ॿी क़िस्म जूं अहिड़ियूं केमिकल्स वारियूं दवाऊं हूंदियूं आहिनि उन्हनि में केमिकल्स हूंदो आहे। इन जे करे कोशिशि कंदा कयो त क़ुदिरती शयूं जेके ऐं हिन मौसम में जेकी हर मौसम में अलॻि अलॻि फ्रूट ईंदो आहे ऐं हर जेको आहे सो फ्रूट जो हर भाॼीअ जो अलॻि अलॻि जेको आहे सो फ़ाइद हूंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां जीअं अॼुकल्ह गर्मी आहे ऐं गर्मी में जीअं मां लास्ट टाइम तव्हांखे खोड़ सारी शयुनि जे बारे में ॿुधायो, फार्मनि वग़ैरह जे बारे में, अहिड़े तरीक़े सां हींअर बि अवां वटि ॾिसो खीरो वंगो जेको आहे सो तमामु घणो जेको आहे सो ऑफर मिक़दार में मौजूदु आहे। खीरो वंगो तमामु हिकिड़ो बहितरीनु, छो जो इन इहो सिर्फ़ु हिकिड़ी जेको आहे सो जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त जेके बि तव्हां ॾिसंदव त जेके ब्यूटिशनिस्ट हूंदा आहिनि या जेके ब्यूटी पार्लर्स में जेके फेशियल वग़ैरह हूंदा आहिनि, जेके असांजो अदड़ियूं वग़ैरह इहे ॿुधनि थियूं ॾिसनि थियूं, त उन्हनि खे ज़रूरु ख़बर हूंदियूं त उन्हनि शयुनि में कुकम्बर, जंहिंखे असां खीरो चवंदा आहियूं, कुकम्बर जेको आहे सो फ्लेवर मौजूदु हूंदो आहे, उहो चमड़ीअ जे लाइ जेको आहे सो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। जेके बि अखियुनि जे हेठां हल्का थी वेंदा आहिनि या चहिरे ते छायूं थी वेंदियूं आहिनि, दाग थी वेंदा आहिनि, इवन मोहिड़ा थी वेंदा आहिनि, या चमड़ी में पट थी वेंदी आहे, खुश्की थी वेंदी आहे, त उन जे लाइ जेको आहे सो खीरो वंगो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। सिर्फ़ु चमड़ी जी बीमारियुनि जे लाइ न, बल्कि हुन में 90% जेको आहे सो पाणी पियल हूंदो आहे, 90% पाणी पियल हूंदो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॿिया अज़ा शामिल हूंदा आहिनि ऐं क़ुदिरती तौर ते विटामिन्स जेके हुन में मैग्नेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम वग़ैरह जेके अव्हांजे जिस्म में जेकी खोट हूंदी आहे पाणीअ जी उहा पूरी कंदी आहे, हॾनि जी कमज़ोरी हूंदी आहे उहा जेको आहे सो ख़तमु थींदी आहे, कोलेस्ट्रोल खे फ़ाइदो ॾींदी आहे, ब्लड प्रेशर जंहिंजो वधियल रहे थो उहे जेकॾहिं खाइनि था उनखे, ऐं वाधि में वधि हूअं बि थधो त पंहिंजी जॻह ते आहे, लेकिन हिन में जेके अज़ा आहिनि ऐं हिन में जेकी क़ुदिरती सलाहियत रखियल आहे उहा जेकी असांखे अल्सर न छॾींदी आहे, मैदे जी तेज़ाबियत थी वेंदी आहे, नंढे आर्डर में जेकी सोज़िश थी वेंदी आहे, तकलीफ़ थी वेंदी आहे, उन हवाले सां ई तमामु अक्सीर आहे। जिन जे वात में खुश्की रहंदी हुजे या जिस्म में जेको आहे सो यानी खुश्की रहंदी हुजे, वात मां जिन जे मां स्मेल ईंदी हुजे या जिस्म मां स्मेल ईंदी हुजे इवन, उन में बि जेकॾहिं खीरे वंगे जो इस्तेमालु ज़्यादा हूंदो त अव्हांखे इहा तकलीफ़ कोन थींदी। रोज़ाना घटि में घटि ॿ खीरा वंगा जेको आहे सो इस्तेमालु करणु घुरिजनि, ऐं घणा जी खल लाहे जेको आहे सो इस्तेमालु कंदा आहिनि, लेकिन खल सां जेको आहे सो हिनखे खाइजे, त जेके खल में बि जेके हिन जे में अज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि में मुफ़ीद अज़ा हूंदा आहिनि ऐं उन मां वधीक फ़ाइदो पहुचंदो आहे। जेके बि बीमारियूं आहिनि, हीअ प्रोग्राम बीमारियुनि जे हवाले सां ई हूंदो आहे, इन ई हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदो, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाजु होम्योपैथिक दवाउनि रस्ते कयो वेंदो आहे, ऐं क़ुदिरती तौर ते जेके हीअ फल फ्रूट सब्ज़ियूं ख़ुदा ताला पैदा कयूं आहिनि असांजे लाइ, त उन में बि अलाह ताला इहा ई हिकमत रखी आहे। इन जे करे एज़ अ फस्ट एड तौर ते तव्हां इहे शयूं इस्तेमालु करे सघो था त उन सां जेको आहे सो यानी चमड़ी जी बीमारी, चमड़ी जी खुश्की, मैदे जी खुश्की, तेज़ाबियत वग़ैरह, या इवन गर्मी में जेको आहे सो कंहिंखे लू लॻी वेंदी आहे या गर्मी जो मथे में इंतिहाई शदीद सूरु पवंदो आहे, त उन में बि जेको आहे सो खीरो वांगुरु इस्तेमालु करण सां काफ़ी फ़ाइदो पवंदो आहे। ऐं पथरीअ जे लाइ बि जेको आहे सो हूअं बि तव्हांखे ख़बर आहे जेके असांजा गुर्दा हूंदा आहिनि उहे असांजे जिस्म जो एज़ अ फिल्टर यानी धोबी तौरु कमु कंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां खीरो वंगू वरी गुर्दनि खे जेको आहे सो सफ़ाई तौर ते धोबी तौरु कमु कंदो आहे, यानी जेकॾहिं अव्हां खीरो वंगो खाओ था ऐं अव्हांखे जेकॾहिं पथरी आहे, किचरो आहे या इन्फेक्शन आहे, त उनखे हू जेको आहे सो काफ़ी सारो फ़ाइदो ॾींदो आहे। यानी दवा पंहिंजी जॻह ते रही, पर जेकी असां देसी ॾसनि में ॾींदा आहियूं त खीरो वंगो बि उन्हनि मां जेको आहे सो हिकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां हॾनि जी कमज़ोरी या हॾनि में सूरु हूंदो आहे त एक्सटर्नली यूज़ तौर ते तव्हां सिर्फ़ु जेकॾहिं खीरे वंगे खे जेकॾहिं गोॾे में सूरु आहे उन ते जेकॾहिं मलींदो त उन में बि फस्ट एड तौर ते अव्हांखे जेको आहे सो काफ़ी फ़ाइदो मिलंदो आहे। वात में जीअं मां ॻाल्हि कई बदबू आहे या छाला थी वञनि था त उन में बि काफ़ी फ़र्क़ु ॾींदो आहे। एतिरे क़दुर जो जंहिंजी जेकॾहिं का चमड़ी सड़ी पए थी ऐं उते खीरो वांगुरु जी मसाज कबी आहे त उन में बि काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पइजे। इहे हिकिड़ी क़ुदिरती शयूं हूंदियूं आहिनि, इन्हनि जे जेके फ़वाइद हूंदा आहिनि, इन्हनि जा तिबी फ़वाइद हूंदा आहिनि, कंहिंखे घटि मालूम हूंदा आहिनि, ऐं असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु इहो ई आहे त ॿिए ताईं असां अवेयरनेस पहुचायूं त इहे शयूं अवां ताईं पहुचाइण सां जो जेको आहे सो एम हूंदो आहे। इन जे करे अवां ताईं इहे शइ पहुचासीं त कहिड़े बि क़िस्म जी मैदे जी तकलीफ़ आहे, कब्ज़ आहे या जेका गर्मी जो असरु आहे त उन में जेको आहे सो खीरो वांगुरु तमामु मुफ़ीद आहे। वॾी महिरबानी साईं।
0: ऐं दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलूं, प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, अॼु तमामु घणी ऐं तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु ॼाण ॾिनी त खीरे जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, छो जो जेके असांजी रोज़मर्रा जी खुराक आहे, फ्रूट आहिनि, फल आहिनि, उन्हनि जो असांजी सिहत ते तमामु गहरो असरु हूंदो आहे। तंहिंजे करे असांखे उन्हनि मां बि फ़ाइदो हासिलु करणु घुरिजे। जीअं हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे, 50-51 सेंटीग्रेड जेको आहे सो गर्मी हली थी वञे पई, इन खां पंहिंजो पाण कीअं बचाइजे। गर्मी जी लुक बि आहे, ॿाहिरि निकिरूं था झोलो आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे माण्हू हलंदे गर्मी में किरी पवंदा आहिनि, बेहोश थी वेंदा आहिनि, रोड ते किरी पवंदा, झंग में किरी पवंदा, किथे भिट ते किरी पवंदा आहिनि। दोस्तनि जूं कालूं बि वठंदासीं, शामिलु कंदा हलंदासीं। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलामु अलैकुम। हलो, कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। असांजो नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं, बज़रिया लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। 0301-9196-851 ते असीं उहो ज़िक्र करे रहिया हुआसीं त फ्रूट ऐं फल जेको आहे सो असांजे सिहत जे लाइ तमामु घणा कारा था आहिनि, फ़ाइदेमंद आहिनि। तव्हां कंहिं बि बीमारी में बि डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था। 0301-9196-851। जीअं गर्मी जी तमामु घणी मौसम आहे, उन में फारवा जेकॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो था तॾहिं बि गर्मी जे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि। ऐं खीरो इस्तेमालु कयो था, जंहिंखे असीं वंगो चवंदा आहियूं सिंधी में, उहो बि जेको आहे तमामु फ़ाइदेमंद आहे। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआ अलहमदिल्ला, केरु साहिबु ॻाल्हाए साईं? ख़ुशि आमदी चऊं था हाफ़िज़ सियाल साहिब खे। छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां? मेहरापुर शहर में अचे थो, अल्लाह ताला जे हुकुम सां अॻु में बि अहिड़ा मरीज़ आया आहिनि जिन खे मिसाल तव्हां 6 महीननि जी, पर 15 ॾींहनि जी झटको लॻो उहे बि न बीह सघनि। पोइ नेठि उहे हली हली डॉक्टर साहिब वटि अहिड़ियूं वीडियोज़ बि पियूं हूंदियूं, व्यूज़ पिया हूंदा आहिनि जेके असीं ॾेखारींदा आहियूं त भई ॾिसो हे मरीज़ आयो। अल्ला ताला जेको मूंसां असीं FM ते बि हलाईंदा आहियूं, उहे पाण चवंदा आहिनि साईं असांजी नंढड़ी या नंढड़ो हाणे घुमे फिरे थो, सही थी वियो आहे, छो तव्हां रूबरू ॾेखारे वठो त वधीक बहितरु थींदो साईं। ऐं इनशाला हिनजो इलाजु मौजूदु अथव, लाॻीतो इलाजु कराईंदो तव्हां नंढड़ी घुमंदी। ठीकु आहे साईं? जी साईं, डॉक्टर साहिबु
1: जी साईं, बिल्कुलु शिफ़ा ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे, बाक़ी इलाजु कराइण सुनत आहे इन जे करे। ऐं हिकु त नंढिड़ो ॿारु हूंदो आहे, नंढे ॿार जे लाइ असां पहिरियां बि अवां सभिनी खे ख़बर आहे त ॿुधाईंदा आहियूं त रूबरू उनखे ॾेखारियो वञे त केतिरी कंडीशन में जेको आहे सो नंढिड़ो मुतासिर आहे, उनखे ॾिसी पोइ ई जेको आहे सो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त उनजी दवा थींदी न थींदी, केतिरी थींदी। ऐं मां पहिरीं ॻाल्हि की त शिफ़ा रब ताला जे हथ में आहे, इन जे करे नंढे खे रूबरू ॾेखारे वञे।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि थी, मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ असांजे समाज में पहुचे पियो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेके हर अरबा ख़मीस जो मौ छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। 0301-9196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था कंहिं बि बीमारी बाबति। कॾहिं बि तव्हांखे मायूस न आहे थियणो, शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अल्लाह ताला जी आहे ऐं डॉक्टर सिर्फ़ु इलाजु कंदो आहे। अल्लाह ताला जे हुकुम सां, अल्लाह ताला जे फज़ल सां काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके सिहतयाब थी विया आहिनि, ठीकु थी विया आहिनि डॉक्टर साहिब जे दवाउनि सां, ऐं डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो आहे, अल्लाह ताला उन्हनि खे शिफ़ा ॾींदो आहे। 0301-9196-851 गर्मी जो तमामु घणो ज़ोर आहे, शिदत आहे, तंहिंजे करे अव्हांखे गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाइणो आहे, छो जो लाइट बि अक्सर करे ग़ाइबु रहे थी। असांजे प्यारे पाकिस्तान जो निज़ाम अहिड़ो ई आहे जो लोड शेडिंग तमामु घणी आहे, ऐं त तंहिंजे करे पंहिंजो पाण बचा करियो। इन जो बहितरु हल इहो आहे त ख़ासितौर ते मंझंदि जे टाइम 11 खां वठी अव्हां 3 वॻे ताईं 4 वॻे ताईं बिल्कुलु घर खां ॿाहिरि निकिरण खां पासो करियो, पखो वग़ैरह उनजो जेको आहे सो हवा जो थोरो पासो वठो, थधि जो छांव जो पासो वठो, उस खां पंहिंजो पाण बचा करियो। ज़ाहिर आहे ई कारोबार आहे, दुनिया जो दस्तूर आहे, अव्हांखे उथणो आहे, वेहणो आहे, शहर बि अचिणो आहे, वञिणो आहे, ॻोठ में बि उथणो आहे, वेहणो आहे, अचणु वञणु सॼो निज़ाम जेको आहे सो हीउ हलाइणो आहे, पर एहतियात ज़रूरी आहे। तंहिंजे करे पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सीनियर डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके सिहत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। जीअं अॻियां हफ़्ते डॉक्टर साहिबु हिकु दफ़ो मौजू फारा जेके आहिनि उहा इस्तेमालु कयो, उहे तमामु थधा आहिनि, उन्हनि जो जूस ठाहे इस्तेमालु करियो। खीरे जो जीअं डॉक्टर साहिबु अॼु ॿुधाए पियो, तव्हां खीरे यानी वंगे जो इस्तेमालु करियो, उहो बि जेको आहे तमामु घणो थधो आहे। उनजो असुलु छा आहे, जेका इंसान जे यूज़ करे थो, उनजो जेको तासीर हूंदो आहे, उहो तासीर इंसान जे जिस्म खे जीअं उनजी स्टेमिना हूंदी त उहा गर्मी जी शिदत खे मुंहुं ॾेई सघंदी। इंसान में जॾहिं स्टेमिना मज़बूत हूंदी आहे त उनजी गर्मी जी शिदत खे इंसान मुंहुं ॾींदो आहे, फेस कंदी आहे उनजी बॉडी। 0301-8150301-2196-8501 प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ अव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ बि वेंदासीं, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुख्तलिफ मुल्कन जा सरबराह वफदन की सूरत में तेहरान पहुंचा आहिनि। लाइव अवां खे ॾेखारे पिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गॾु ई मौजूदु आहे। पाकिस्तानी वफ़द पारां ईरानी इख़्तियारनि सां ताज़ियत कई वई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बि वज़ीर आज़म सां गॾु ई तेहरान पहुता आहिनि। लाइव मंज़र तेहरान मां अवां खे ॾेखारे पिया। शहीद आयतुल्ला अली खामनाई जो आख़िरी रस्मूं अदा कयूं पियूं वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

0: 0306-1623-793.
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मसह स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मसह स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मसह स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 03583569।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014541 456 तौकीर अहमद 03006।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में